एमए फाहुगे नतीजा मेनवी एवरिंग इंतजार कुरे हैं ये एमए फाहुगे नतीजा फिनिगिंग अन्न दुआ ए बही कयाम दुआ कुरिंग एकंतं हंदा न तालमी हम बुनाने थे हम कशवरुं थिमम मेंगे वेरी रस कलांगे फनुवी रसूलुं हक दीना एगें वड़ा गते फाहे थिमम में न शफाअ तेरिं तक वे बावे नुवत दुनियेगा थिमम में अमल कों उलुन गुन नून गुतका अमल कुरमट्टका थिमम में एम्बरी दुनिये फनुवाने बावे हम कशवरुं एवरें एवरेंगे नफ्स तन नगा लाफी आदि एवरें दोगुं उफद्दा उलुन इलाहुंता एवरें न गेल्ले हिंगज्जे

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो गेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य के अड़ू फोनी करुणा
3: अनेकावस बप्पा हुट्टाली फल के लिबे हास कंदिए इतुर बमुन्ने
2: मम्मा वाहक
3: पिन लिबे हिंदु मां बणुं तोले मुं एदा इरु हीबे
2: जखम
4: यहा गद्दुनु कोंगुले कन्नुमा
3: डोयफावा अडकुं सऊदीया बुन्ने
2: मिफदा असरुग द रीति वाहकता दिविराज जगाडुगे YouTube चैनल मिहारु अडोस वाले फेरे दिविराज जगाडुगे YouTube चैनल सब्सक्राइब कोलावा

0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिकु दुं हाउ दाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना सकां कंको देन ना है दी मुन्ना वरहा उपावे
3: ગાડિંગ હવીર ફહે ચહી મી દિવિરા ચેકાટ

0: रहन दे स्कूल के आहारी दोहा की 9 सितंबर रहन दे स्कूल मिहार में फुरनी 11 दो सेवा
1: आ मी वाला तारीख स्कूल है आद आहार में हाउस की रानी हाउस दो
0: आ जीवन कौन क्लब है
1: एनवायरमेंट क्लब का आद रानी कौन क्लब है
0: इंग्लिश क्लब का
1: मी के कोंबे क्लब को हिंगा कोंबे हरकत है दिस फरंग हासवान नुंत आद
0: आ बरवे सासा

0: हंगार
1: अंगार दो हम इंद्र कोरी इकार गढ़ फन रहे रिपीट एरे दिया गढ़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदमो पार गढ़ तेरी हूँ
0: हंगार हम एकने दिवे राज्य के डूम
2: कोम में मीहा कीवेस ऐही तेरिकम बेनुं वाने मीहे हासको नुकुले दुन तेरिकं हुन्ना मी हुन्ना कुरी मतिवा गोंजे हुन तका एमी हुंगे हक्कु तका मुजुतमाउगा ए फरैतवगे दाउरा बेहेगो तुं आहरु में कोम में हेंवे समाल कंदें जेहे
3: वाह केत्ता मजमून एत्ता नोने ड्रामा एत्ता
4: अदिति ही कुरी रंगड़ खन्नो
5: नुकुले दुन तेरिकं हुन्ना फरैतका हासको दिवि राज्य गड़ों के निस्तेनी
6: कोलम नोहर में गोंडी गई शींदे आहार इन कोलम होरे लफाना तत्ता ही शींदे
7: हाँ दे अंगडे खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
6: कुद्दे वे कुड़ा कुड़ा हेओ कमकों ऐह मी है केदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
8: दिवे हींगे अमील लवंत कंग कुरियारु आदे
9: दिवे हींगे उफेदुन तेरिकं दक्वादे
8: दिवे हींगे माजीगे मंजरता सिफकोद्दे
9: दिवे हींगे अडु
8: दिवे हिराज्येगे अडु
9: एंहा सतर्स्तेक सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
8: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
10: गडिम मेंदमुं अलिवे देगडी तीरिस मी दिवे राज्ये गाडू
1: अठारह हरों में देगे उम्र फ्रेय खास करे फावा प्रोग्रामे में प्रोग्राम का अठारह हरों दर्शके कुड़ को देना नोगले अड़ा वाह करूं एकशी गेम्बे